0: of 10
1: क्यों नहीं चाहिए चल
0: ओके देन भरे कलह में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो